You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: धुरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ।

0: जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं, आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम भरने वाले हैं उड़ान। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। क्योंकि भाई मेरा तो यही मानना है कि भाव मुझाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे बातें हम करेंगे, किस्से सुनाएंगे, मगर प्यार भी हमसे आप जो है हम करेंगे, आपसे हम करेंगे, मगर प्यार के बारे में बात किए तो मेरे मन में यही गाना आ रहा है। जैसे कि उस छोरी ने बोला इट्स पॉसिबल, इसी आस में हम बैठे हैं, मगर उसके साथ साथ वेलकम। तो चलिए जैसे कि मैंने बोला कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे बातें बहुत सारी करेंगे हम, किस्से बहुत सारे सुनाएंगे, मगर सबसे पहले आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर आप मैसेज कीजिए, अपने गुड मॉर्निंग कोड्स भेजिए, मैसेजेस भेजिए, मोटिवेट कीजिए, उसके साथ साथ अपना प्यार जताइए, बताइए क्या क्या करने का इरादा है क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हेलो नमस्कार,
5: मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑल।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. यार जैसे कि थोड़ी देर पहले गाना हमने सुना, ठीक है, प्यार इम्पॉसिबल मूवी का टाइटल ट्रैक था. इसमें सबसे पहले लड़का बोलता है प्यार इम्पॉसिबल है, लड़की बोलती है प्यार पॉसिबल है. उसके बाद ना पासा पलट जाता है, लड़की बोलती है प्यार इम्पॉसिबल है, लड़का बोलता है प्यार पॉसिबल है. तो यूजुअली हमेशा रिलेशनशिप में ऐसा होता है, जो मैंने इस गाने से, और इस गाने से नहीं अपने आसपास के क्या कहते हैं लोगों से, उनके रिलेशनशिप से मैंने ये जरूर ऑब्जर्व किया है कि पहले लड़का थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं काफी अलूप सा रहता है, ये सब रहता है, ठीक है. लड़की बहुत एफर्ट डालती है. जब लड़की का पूरा हो जाता है कि नहीं भाई अब नहीं डालना एफर्ट, तब लड़के को समझ में आता है कि नहीं यार मुझे तो एफर्ट डालना है, वो बेचारी इतना सब कुछ कर रही है, मुझे भी करना चाहिए. बट जब तक ये थॉट आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है बहुत लोगों के लिए. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, आया है बता के जाएगा. अभी फिलहाल यहाँ पे मैसेजेस पढ़ते हैं. मेरे पास आए हैं मैसेजेस, सभी साची भाई के मैसेज आए हैं. उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग. ऋषीन का मैसेज आया है, ऋषीन ने लिखा है गुड मॉर्निंग करके, और एक बहुत ही प्यारा सा फोटो भेजा है. उसमें लिखा है लाइफ विल नेवर वेट फॉर यू टू बी ओके, गेट अप, carry your burden and keep going. Good morning, Jio Bindas. Thank you so much, जी, thank you so much. Actually, सही बात है. Life के कुछ realizations में से एक है कि हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे. सब ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो है पीछे रहती हैं, बस हमें करना होता है जो हमें करना होता है. और मैसेज आया अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड प्रोग्राम इट फॉर योर सक्सेस. गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे करके जुल्फी भाई का मैसेज आया, थैंक यू सो मच जी. और अबरार भाई ने भी हमें बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग का एक फोटो भेजा है. शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, और शशिकांत पाटिल जी ने मुझे मैसेज किया है, लिखा है कि इवन अ करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट्स टू लेट, लाइफ इज अ गेम ऑफ टाइमिंग, रिस्पेक्ट टाइम एंड टाइम विल रिस्पेक्ट यू. वाओ, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. और नाजनीन जी का मैसेज आया है, नाजनीन जी ने भी मैसेज लिखा है वेक अप विद ग्रेटिट्यूड एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड, गुड मॉर्निंग करके. बिल्कुल सही बात है, अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुरे वक्त में भी आपको सेम रखने के लिए थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने कई दफा नोटिस किया है कि जब भी हमें लाइफ में कोई दिक्कत आती है तो हम बोलते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. जब अच्छाई आती है तब नहीं बोलते कि यार मेरे साथ ऐसा, मतलब मैं तो काफी लकी हूं. वो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए दुख और सुख जो है ये मौसमों की तरह हैं, ये बदलते रहेंगे, ये आते जाते रहेंगे. इनमें से कभी भी किसी के साथ हमें रिश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम इनके साथ रिश्ता बनाएंगे तो फिर दुख के साथ ही रिश्ता बन सकता है हमारा, और किसी के साथ तो बन नहीं पाएगा. और सरिता जी का भी जो है एक मैसेज आया है, सरिता जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव जी. अरे हाँ, एक्चुअली इनका कल का मैसेज था जो अभी लोड हुआ, आई एम रियली सॉरी सरिता जी, मैंने गलत पढ़ लिया आपका मैसेज, सॉरी. हाँ सॉरी, कभी कभी सिस्टम ऐसे छोटे छोटे नॉटी हरकतें कर देता है मेरे साथ, नटखट भी है हमारा सिस्टम थोड़ा. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में हम आएंगे वापस आपके पास सवाल पूछने के लिए और ये परखने के लिए आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सबसे कितने तेज हैं. अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: Awesome.

0: केके की आवाज में हेरा फेरी मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:33 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मेरे पास एक सवाल है। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल का जवाब आपने देना है, बताना है मुझे कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सबसे कितने तेज हैं।
1: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: यहाँ पे जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि ब्रेन फॉग के कारण थोड़ा थोड़ा जो है अपन डेट गलत पढ़ लिए थे कल, तो आज है 20 तारीख, आज है इंटरनेशनल बी डे, तो एक बी रिलेटेड सवाल जो है हम लेकर आए हैं। सवाल ये है कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है, आंखें कितने हैं एक मधुमक्खी के पास, ये आपको बताना है। देखिए दो तो नहीं है आंसर, ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो आपको 3311063 पर मैसेज करके बताना है कि एक मधुमक्खी के कितनी आंखें होती हैं, इसके बारे में आप मुझे आंसर दीजिए और मैं डिटेल में क्या है वो चीज, फैक्ट क्या है सब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले आप मुझे मैसेज कीजिए, आंसर मैसेज कीजिए। और यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक गाना केके और डोमिनिक की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि एक मधुमक्खी जो है, ठीक है, या फिर एक बी, हनी बी के कितनी आंखें होते हैं, आंखें कितने हैं उसके पास, कितने आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, ये सवाल जो है पूछा गया था। और यहाँ पे भर भर के हमारे पास जो है जवाब आए हैं, तो चलिए एक एक करके सुनते हैं। ध्रुव भाई का मैसेज आया है, वो सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज ध्रुव हियर एंड आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन इज 5।
0: ध्रुव भाई थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। उसके साथ साथ मुझे और भी मैसेजेस आए हैं। मेहरूनी सजी का मैसेज आया, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग सुदेव, 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी और 3 छोटी, मॉर्निंग शो की बागडोर अकेले अपने आपने संभाली हुई है, गुड जॉब। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मुझे सृष्टि का मैसेज भी आया है। सृष्टि ने भी यही बोला है, गुड मॉर्निंग दिस इज सृष्टि एंड द आंसर टू टुडेज क्वेश्चन इज 5 आइज। और कमरनिसा जी ने भी मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कि एक हनी बी के पास कुल 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी आंखें ये सिर के दोनों तरफ होती है और इनसे मधुमक्खी को रंग, चीजों की दिशा और हलचल दिखाई देती है, 3 छोटी आंखें जिन्हें सिंपल आइज बोलते हैं ये सर के ऊपर होती हैं, रोशनी पहचानने में मदद करती है। क्या बात, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यही तो पसंद है हमें। और एक टीचर होने के नाते बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। जुबैर अहमद भाई ने मैसेज किया, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग, 2 लार्ज एंड 3 स्मॉल आइज करके, यानी कि 5 आइज। और रोशिका का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है हनी बी हैज 5 आइज। नेहा जी का मैसेज आया है, नेहा जी ने बोला है 5 आइज। और अंकी का मैसेज आया है, अंकी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, जिंदगी एक मिरर की तरह है, आप मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगी, हैव अ पॉजिटिव एंड पीसफुल डे अहेड, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, अंकित करके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी लिखा है 5 आइज। तो सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, तो यहाँ पे बजेगी आपके लिए तालियां। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हमें मैसेज किया था कमरनिसा जी ने, बिल्कुल सही बात है, 2 लार्ज कंपाउंड आइज होते हैं जो सर के दोनों साइड में होते हैं और ये जो है बहुत ही छोटे छोटे लेंसेज से बने होते हैं और इनका जो प्राइमरी यूज है वो डिटेल्ड विजन, डिटेक्टिंग मोशन और कलर्स को देखना, फ्लावर्स के कलर्स को देखना, अल्ट्रा वायलेट को देखना, इसके लिए यूज होता है। और जो 3 सिंपल आइज हैं जिन्हें ओसेली भी बोलते हैं, वो एक ट्रायंगल की तरह जो है सर के ऊपर अरेंज किए जाते हैं और इन आंखों से कोई क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होता, इंस्टेड ये लाइट इंटेंसिटी में जो चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से बी को बैलेंस करने और अपने मोशन को ओरिएंट करने में जो है हेल्प करता है। तो देखिए यार, नेचर कितना कितना एक कॉम्प्लिकेटेड येट ब्यूटीफुल चीज है। मैं सच बताऊं तो ये बात पढ़ के मैं भी काफी अचंभित रहा हूं कि वाओ यार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो हमारे सोच के परे होते हैं, जो हमें लगता है कि वाओ यार ये कैसे हो गया। और उनमें से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारे सर्वाइवल के लिए बीस का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बीस जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से जो है पॉलिनेशन जब करते हैं तो ये ह्यूमन रेस को सर्वाइव करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। इवन जब प्लांट्स होंगे, जब पॉलिनेशन होगा, तब जाके वहां पे भी डिफरेंट तरीके के फ्लोरा फौना आएंगे। और ये सारी चीजें जो हैं बहुत माइन्यूट लगेंगी हमें, मगर ऑन अ बिगर स्केल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कभी भी एक मधुमक्खी को छोटा मत समझना। और दूसरी बात यह है एक मधुमक्खी के बारे में, ये है कि एरोडायनेमिकली इट इज नॉट सपोज टू फ्लाई, मगर फिर भी वो उड़ता है। तो बात यही है कि अगर आपके आसपास ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको बोलो कि नहीं, अगर मधुमक्खी का शरीर जो एरोडायनेमिकली अनफिट है उड़ने के लिए वो उड़ सकता है, ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर सकता है, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

सामने सुना, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहाँ पे अभी का टेम्परेचर जो है 33 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। आज का लोएस्ट टेम्परेचर होगा 29 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट होगा 38 डिग्री सेल्सियस और हवा जो है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी? ना ना ना इतने भी हल्के नहीं है कि हवा मुझे उड़ा दे। वैसे भाई मौसम कैसा है आपके लिए? क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा था कि यार आज ना उतना क्लियर स्काई मुझे लग नहीं रहा था। एक काफी कुछ कुछ लग रहा था कि भाई एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ सस्पेंडेड है, हवा में कुछ कुछ सस्पेंडेड है। हल्का हल्का जो है सन भी उतना ब्राइट नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डिम सा लग रहा था। तो अभी कैसा है माहौल जरा मुझे बताइए, बाहर कैसा है? सूरज की रोशनी चमकदार तरीके से आ रही है, नहीं है, क्या है आसपास का माहौल, क्या है? अच्छा एक फोटो खींचिए, भेजिए हमें 3311063 पर और नजारे दिखाइए मुझे, क्योंकि मैं तो स्टूडियो के अंदर हूँ भाई, चार दीवारों के अंदर कहाँ देख पाऊंगा मैं। तो आंखें बनिए मेरी, नजारे दिखाइए। थैंक यू सो मच इन एडवांस बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। अमाल मलिक और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते हैं यही गुजार दूं। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:19 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़े मैसेजेस आए हैं और मैसेजेस में मुझे मुशीर आलम भाई ने जो है फोटो भेजा है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक फोटो भेजा। उन्होंने बोला कि आसमान उतना क्लियर नहीं है, कुछ कुछ तो है ऐसे, उतना क्लियर नहीं है, क्लियर स्काई तो है नहीं। और हमें मोहम्मद इमरान खान का मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है, काफी प्यारा फोटो है, ठीक है, दो गुलाब को ऐसे हाथ में पकड़ रखा है और एक फोटो भेजा है और उसमें लिखा है कि सुबह आंख खुलते ही ये दिल आपको ही याद करता है, कैसे हो आप? अरे अरे जी, मैं बढ़िया, आप बताएं क्या हाल है, और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया जा रहा है। और सामी भाई ने मुझे यहाँ पे एक फोटो भेजा है, सामी भाई ने भी एक बहुत ही प्यारा सा फोटो जो है क्लिक करके भेजा है, जहाँ पे कतर का फ्लैग दिख रहा है हमें और आसमान उतना क्लियर नहीं है, मतलब थोड़ा सा सुरमई सा है, थोड़ा सा सुरमई सा है। लिखा है उन्होंने कि अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया, आप बताएं क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ? और मुझे लगता है कि शायद तो धीरे धीरे धूल वूल है थोड़ी, है जो है हवा में ऐसे सस्पेंडेड है, मे बी इसलिए हो सकता है, थोड़ा सा सुरमई सा आसमान है, बट ठीक है, मुझे सही लगा, ठीक लगा। जब मैंने सूरज बाबू को देखा आज सुबह तो मैं सोचा कि भाई चमक तो रहे हो मगर तुम्हारी चमक यहाँ तक पहुँच नहीं रही है, ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है करके, बट अच्छा लगा मुझे वैसे, ठीक है, थोड़ा सा एक अच्छा माहौल सा भी लगा। अब देखिए सुरमई आसमान देखते तो हम खुशी हो जाते हैं ना, खुश होने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, जैसे कि सिंगम में अजय देवगन बोलते हैं मेरी ज़रूरतें हैं कम इसलिए मेरे बाजू में है दम, बट मेरी ज़रूरतें कम है नहीं वैसे, बट खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ लेते हैं। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आपके साथ शेयर करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यह है फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिकवरी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वर्कआउट के बाद जो है बॉडी काफी हाई अलर्ट मोड में होती है, हार्ट रेट जो है हमारा एलिवेटेड रहता है, ब्रीदिंग फास्ट होती है और नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेटेड स्टेट में होता है। और रिसर्च ये दिखाती है कि स्लो और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग रिकवरी प्रोसेस को फास्टर और स्मूदर बना सकता है। वर्कआउट के बाद डीप इनहेल और स्लो लॉन्ग एक्सहेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये करेंगे तो बॉडी का जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, यानी कि रेस्ट एंड रिकवर मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, हार्ट रेट जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो जाएगी, स्ट्रेस हार्मोन्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएंगे और बॉडी को रिकवरी का सिग्नल मिल जाएगा। और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग स्पेशली इंटेंस वर्कआउट के बाद हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को काम करती है और पोस्ट वर्कआउट डिजीनेस या ओवर स्टिमुलेशन को कम कर सकती है। बहुत ही सिंपल है, हम नाक से सांस ले 4 सेकेंड और काफी स्लो एक्सहेल करें 6-8 सेकेंड्स का और 2-5 मिनट्स तक ये रिपीट करें। शॉर्ट में बात यही बोलूंगा कि ब्रीदिंग सिर्फ वर्कआउट के दौरान ही नहीं, वर्कआउट के बाद भी रिकवरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो सांस लेना, सही तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे काफी बढ़िया लोकल अपडेट जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन ने बताया कि उनका फैमिली मेडिसिन मॉडल अब कतर के सभी 31 हेल्थ सेंटर्स में चल रहा है और इससे हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी जो है काफी बेटर हुई है। PHCC के मुताबिक फैमिली डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं बल्कि पेशेंट्स और उनकी फैमिली के हेल्थ हिस्ट्री को समझकर लॉन्ग टर्म केयर और अर्ली डिसीज डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे 2026 के मौके पर इस साल का थीम कंपैशनेट केयर इन अ डिजिटल वर्ल्ड रखा गया, जो डिजिटल हेल्थ केयर और ह्यूमन टच दोनों को इम्पोर्टेंस देता है। PHCC ऑफिशियल डॉक्टर सामिया अहमद अल अब्दुल्ला ने कहा कि फैमिली मेडिसिन मॉडल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करता है, जैसे रेगुलर चेकअप्स, वैक्सीनेशंस और डायबिटीज, BP, कैंसर जैसे डिसीजेस की अर्ली स्क्रीनिंग। इस मॉडल की वजह से हॉस्पिटल पर प्रेशर जो है कम हो रहा है, अननेसेसरी रेफरल्स रिड्यूस हो रहे हैं और पेशेंट्स को क्लिनिक में ही कंप्लीट हेल्थ केयर सपोर्ट जो है मिल रहा है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल काउंसलिंग। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: शर्ट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: धुरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: Hi everyone, this is Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में और देखते हैं क्या हुआ था कल के मैच में, क्या क्या पता चला हमें, सब डिटेल में मैं बताना चाहूंगा। कल मैच हुआ था भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। एक मिनट में जरा कंफर्म करके देख लेता हूँ। बहुत ही प्यारा मैच था राजस्थान और लखनऊ के बीच में। मैं चाहता था कि वो लखनऊ जीत जाए मगर राजस्थान जीत गई 7 से। तलब और ए रीजन, अब चेन्नई बारी हो गई, अब क्या कर सकते हैं अब क्या ही फायदा देख के। बढ़िया जो है काफी इंटरेस्टिंग मैच था। अगर हम देखें तो काफी अच्छा खेला लखनऊ ने, 220 रन जो उन्होंने स्कोर किए थे और राजस्थान ने 225 रन स्कोर करके मैच को है जीत लिया 7 से। 5 बचे हुए थे। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो मिचेल मार्श ने 96 स्कोर किया, जॉश इंग्लिश ने 60 स्कोर किए, ऋषभ पंत ने 35 रन स्कोर किए। और राजस्थान की बैटिंग लाइनअप में वैभव सूर्यवंशी ने 93 स्कोर किया, ध्रुव जुरेल ने 53 और यशस्वी जसवाल ने 43 स्कोर किए। हाई स्कोरिंग मैच था, दोनों टीम के प्लेयर्स ने काफी बढ़िया दमदार परफॉर्मेंस दिया। राजस्थान ने बेटर क्रिकेट खेला, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सीजन के स्टार्टिंग में टॉप पर ही था, उसके बाद वो थोड़ा नीचे आ गया था। अब वापस उन्होंने अपनी जगह जो है टॉप 4 में बना ली है और अब तो भाई मुझे नहीं लगता कोई चांस है जीतने का चेन्नई के पास, क्योंकि रन रेट भी कम है और स्कोर पॉइंट्स में अगर हम देखें तो 2 का फर्क है। राजस्थान के पास भी एक और मैच बचा है। अगर अगले मैच में काफी बढ़िया दमदार धुआंदार रन रेट आ जाए तो शायद कुछ हो जाए, बट मुझे लग नहीं रहा कि अब कुछ होगा। अब तो 4 टीम्स जो हैं मुझे लगता है फाइनल हो ही चुकी हैं, बैंगलोर, गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान। और दिल का दरिया तो बह नहीं लग गया ये देख के, क्योंकि एक टाइम था आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के बिना टॉप 4 होता नहीं था, बट चीजें बदलती हैं, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, चीजें बदलती रहती है। बट कोई बात नहीं, आज के मैच के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड मॉल ऑफ कतर और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
1: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 8:33 हो रहे हैं. मैं बताना चाहूंगा आज के मैच के बारे में. आज होने वाला है कोलकाता और मुंबई के बीच में मैच, और दोनों टीम जो है काफी तगड़ी टीम है, टेबल के आखिरी में है, और आखिरी में नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ. कोलकाता 8th पोजीशन में है और मुंबई 9th पोजीशन में है, तो ज्यादा फर्क भी नहीं है. लखनऊ जो है 10th पोजीशन में है. लखनऊ ने छोड़ा नहीं, बोला कि भाई मैं ही लूंगा वो, ठीक है, तुम में से किसी को नहीं दूंगा करके. तो आज के मैच में अगर मुंबई या KKR में से कोई जीत जाता है तो खास कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों टीम में से कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी. और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बहुत कम ऐसा होता है कि चेन्नई जो है टॉप फोर में ना हो, वैसे ही इस सीजन में मुंबई जो है टॉप फोर में नहीं है. चेन्नई मुंबई जो है ये दो टीम यूजुअली टॉप फोर में होते हैं, तो पिछले कुछ सालों में हमेशा जब भी ये लीग चला आ रहा है तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई पहले के दो पोजीशन चेन्नई मुंबई को छोड़ दो, बाकी दो टीम कौन सी होगी, ये होता था. बट अभी वो दौर जो है बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है. हम देख रहे हैं कि बाकी टीम्स भी जो है अच्छा एक खेलने लग गई हैं, डोमिनेट करने लग गई हैं. अच्छी बात है, ऐसे बदलाव आने चाहिए. और मगर फिर भी मैंने एक पोस्ट देखा था कि बैंगलोर का पीक परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी 18 पॉइंट है उनके टेबल में, चेन्नई का वीक परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी 12 पॉइंट है उनके टेबल में. तो अच्छा है. बट इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा विदाउट एनी जेलसी, विदाउट एनी थिंग, कि बैंगलोर ने काफ़ी बढ़िया खेला है इस सीज़न में, बहुत बढ़िया खेला है, मतलब मानना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने मैचेस खेले हैं, डोमिनेट किया है. हारे हुए मैच को हार के मुंह में से अपने पास लेकर आ गए वो, तो काफ़ी स्पिरिटेड टीम ज़रूर है. तो मैं चाहूंगा कि जो है अच्छी स्पिरिटेड टीम जो है एंड में ट्रॉफी जरूर उठाए. लेट्स सी क्या होता है. बट आज के मैच में कोलकाता और मुंबई खेलेंगे. सच बताऊं तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है इस मैच का. पॉइंट्स में फर्क आ सकता है, मगर अगर मुंबई जीत भी जाती है तब भी मुंबई के पोजीशन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा. मुंबई तब भी 9th पोजीशन पर ही रहेगी, क्योंकि 10 पॉइंट ही बनेंगे और कोलकाता के 11 पॉइंट ऑलरेडी हैं. और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज में क्वीन मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में. बिंदास
0: मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है मैं देना चाहूंगा आपको। कतर नेशनल शूटिंग टीम ने जीसीसी गेम्स दोहा 2026 में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए एक ही दिन में 7 मेडल्स जीते। 7 = थला फॉर रीजन। 3 गोल्ड और 4 सिल्वर, और ओवरऑल जो कतर का मेडल टैली में है 119 मेडल्स हो चुके हैं, और टॉप में अपना पोजीशन जो है कतर ने सॉलिडिफाई कर लिया है। मेंस ट्रैप टीम इवेंट में कतर के मोहम्मद अल रुमाही, एंजेलोस कालजोनी और सईद अबू शरब ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि वुमेन्स ट्रैप टीम ने सिल्वर हासिल किया। शूटर दुआ हबीब ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता, और कतर वुमेन्स टीम ने भी इस कैटेगरी के टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कतर नेशनल पैडल टीम ने बहरीन को 3-0 से हराकर जीसीसी गेम्स में अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखा है। टीम पहले से ही सऊदी अरेबिया और कुवैत को भी हरा चुकी है, और वॉलीबॉल में कतर को बहरीन के खिलाफ फाइनल में सिल्वर मेडल मिला, जबकि हैंडबॉल टीम को टूर्नामेंट की पहली हार बहरीन के अगेंस्ट 24-19 के स्कोर से मिली। अभी फिलहाल यही अपडेट देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर में गानों के उस पार जो है हमारा एक पॉडकास्ट सेशन आने वाला है, पॉडकास्ट ऑफ द डे विच इज ब्रांड स्टोरीज। तो आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और एक साथ बैठकर कहते रहिए जियो बिंदास।

0: रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-561-23.

0: तो धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ओलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्त है. आज का मूड ना बहुत स्लो है और मैं कभी कभी ना स्लो होना मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है स्लो होने में कि हम सब लाइफ में ना इतनी जल्दी में होते हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले नोटिफिकेशंस चेक करते हैं. मतलब आईज प्रॉपरली ओपन भी नहीं होती और मेल्स, ऑफिस अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि यार फर्स्ट वी हैव टू चेक आउट. और इसी वजह से मॉडर्न लाइफ जो है वो फिजिकली नहीं मेंटली एग्जॉस्टिंग फील करती है. तो आज का सबसे छोटा सा रिमाइंडर ये है कि आप मशीन नहीं हो. दूसरा ये कि मैं अभी भी याद करती हूँ जब मैं घर पर थी और ऑफिस जाया करती थी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि भाई क्या चल रहा है घर में, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. मैं जैसे ही घर पर आती थी सीधे अपने कमरे में जाती थी और आराम से लेट जाती थी, क्योंकि पता था कि अगली आवाज़ ही आने वाली है कि क्या खाओगी, क्या यू नो पसंद करोगी. पर आज मैं जब घर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत याद आती है उस चीज़ की, क्योंकि यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन. मतलब वो सारी चीज़ें जो एक यू नो घर में जब आप रहते हो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, पर अब वो खुद से करनी पड़ती हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड अडल्टहुड. और इस अडल्टहुड और अडल्ट मनी एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट दैट, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम हर रोज़ बात करते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Radio Bindaas. Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: So, कतर में वेदर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है ऑलरेडी गर्मी जो है वो तो है ही, और इसी के बीच में बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, आपका वर्कआउट हो, आपका खाना हो, हर कोई आपको बहुत सारी डू दैट। और इसी के बीच में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो कतर का जो यू नो डिपार्टमेंट है जो वेदर के बारे में अपडेट देता है, उसने मरीन वार्निंग इशू किया कि भाई स्ट्रॉन्ग विंड्स और हाई टाइड्स जो है वो 9 feet तक जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सी इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कतर में। अब मरीन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र के आसपास जाके बहुत सुकून मिलता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आज वेदर थोड़ा सा ऐसा रहेगा, अगर आप सोच रहे हो कि यार थोड़ा बाहर निकला जाए शाम को और सडनली चेंज हो जाता है, इसीलिए अथॉरिटीज जो है उन्होंने स्पेशली एडवाइस किया है कि अननेसेसरी मरीन एक्टिविटीज जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। So, जो स्पेशली जिन्हें एक्चुअली ऐसा लगता है कि यार वेंसडे थर्सडे तो मतलब वीकेंड आ रहा है और ये सब आप प्लान कर सकते हो, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें वी विल प्लान साथ में, और बताऊंगी आपको कि आज कौन सी किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सुंदर रही रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: आज की किताब बहुत ही सॉफ्ट, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक इंसान की तरह। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो किताब का नाम है द हाउस कीपर एंड द प्रोफेसर।
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो बेसिकली जापनीज ऑथर हैं और उनकी ये बुक ग्लोबली बहुत ज़्यादा लव्ड बुक्स में से है। स्टोरी एक प्रोफेसर की है। किताब का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द हाउस कीपर एंड द प्रोफेसर, जिनकी मेमोरी सिर्फ 80 मिनट्स तक काम करती है और उनकी जो केयर टेकर है और एक स्मॉल बच्चा जो उनके साथ इमोशनल बॉन्ड स्लोली स्लोली डेवलप कर रहा होता है। सो बुक जो है वो मैथमेटिक्स को इमोशंस के साथ कनेक्ट करती है। नॉर्मली मैथ्स जो है वो कोल्ड सब्जेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स भी इमोशनल फील होते हैं। और बुक का बिगेस्ट ब्यूटी जो है वो उसकी सिंप्लिसिटी है। कोई ड्रामा नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन आपको इस किताब से फील होगा। और आज की जो फास्ट नॉइसी वर्ल्ड है उसमें कुछ ऐसी काम किताबें अगर आपको पढ़ना पसंद है, देन यू कैन गो विद दिस बुक। जापानीज ऑथर की किताब है योको ओगावा, जिन्होंने ये किताब लिखी है। सो यू कैन रीड दिस बुक। और साथ ही साथ बात करेंगे कि भाई और क्या क्या चल रहा है, कांस में कौन सी मूवी है जो गई है। वी विल टॉक अबाउट दैट। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो कभी कभी लोग सेफ करियर छोड़कर रिस्की सपना चूज कर लेते हैं और तन्मय जो सीकर हैं उनकी भी स्टोरी ऑलमोस्ट ऐसी ही है. अब आप सोचोगे कि कौन है, तो आपने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी होगी या नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ आपको देखनी चाहिए, विच इज नुक्कड़ नाटक. US में ही वॉज डेटा साइंटिस्ट, मतलब मूवी में नहीं असली में, और बाद में बहुत अच्छी सैलरी, सिक्योर लाइफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग चूज की. कोई बिग स्टार नहीं है, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, इंडस्ट्री का कोई बैकअप नहीं है. उनकी फिल्म जो है वो रॉ इंडियन स्टोरी टेलिंग और नुक्कड़ नाटक स्टाइल के लिए अप्रिशिएट हो रही है और अभी वो कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच गई है, विच ऑनेस्टली प्रूव्स वन थिंग कि ऑथेंटिक चीज़ें और स्टोरीज ना मतलब कहीं भी जा सकती हैं. सो ऑडियंस ना वो पॉलिश्ड सिनेमा से थोड़ा सा तो थक चुका है, ये बात तो बिल्कुल सच है. सो लोगों को रियल, रॉ और रूटेड स्टोरीज जो है वो ज़्यादा पसंद आने लगी हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और आपने नुक्कड़ नाटक देख लिए तो बताओ मुझे कि आपको कैसी लगी. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, आई विल बी राइट बैक. बात करेंगे कि भाई मैचेस के हाल चाल क्या है. सुन रहे रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311 1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो या तो रोहित जो है वो मुंबई को जिताएंगे या फिर अंग क्रश आज कितने रन बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमें शाम को ही पता चलेगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। कोलकाता वर्सेस मुंबई का मैच आज होने वाला है और इसी के साथ कल के मैच की भी बात करेंगे, विच वॉज राजस्थान वर्सेज लखनऊ। सो अभी अगर मैं बात करूं सूर्यवंशी की, जिन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और उन्होंने सीजन पावर प्ले में 426 रन बनाए, मतलब एक सीजन के पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए हैं वो। पहले नंबर पर डेविड वार्नर हैं और उन्होंने सीजन पावर प्ले में 426 रन बनाए हैं और इस लिस्ट में डेविड वार्नर जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, विच इज़ ऑन नंबर वन। वार्नर ने 2016 में पावर प्ले में 467 रन बनाए थे, विच इज़ 467 रन। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि अब चारों जो टीम्स हैं वो डिसाइड हो चुकी हैं कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो फाइनल में जाने वाली, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बात करने वाली हूं। सो आप कहीं मत जाइए, सुन रही रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: अगर कोलकाता को प्ले ऑफ में बने रहना है तो उन्हें हर हाल में आज का मैच जीतना पड़ेगा. टुडे इज 65th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. मतलब पता ही नहीं चलता यार कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है. मतलब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और मैं हर दिन मैचेस की बात करती हूँ और आज एक्चुअली 65th मैच है इस पूरे टूर्नामेंट का. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. बात करते हैं प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए. अगर कोलकाता की बात करूँ तो उसे हर हाल में आज जीतना पड़ेगा. टीम 12 मैचेस में 11 पॉइंट्स के साथ 8th नंबर पर है और टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी जो मुंबई है 12 मैच में 8 पॉइंट के साथ 9 नंबर पर है. अब दोनों टीम के बीच में अब तक 36 मैचेस हुए हैं. कोलकाता ने 11 और मुंबई ने 25 मैचेस जीते हैं. बहुत बड़ा डिफरेंस है. और इस सीजन के पहले जो मैच है उसमें मुंबई ने अपना नाम तो पहले ही लिखवा लिया था बड़े अच्छे मैचेस खेल के. सो अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो अंग क्रश रघुवंशी बड़े ही अच्छे बैटर हैं और कार्तिक त्यागी बॉलर बहुत अच्छे हैं. और फिर अगर मुंबई की बात आती है तो रायान रिकल्टर और अलाल गजनफर, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे बैटर और बॉलर हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं. सो आपको क्या लगता है कि आज शाम को क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है? क्योंकि सारी लाइव अपडेट्स तो आपको यहीं पर मिल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat ye baat hai? Awesome.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड मॉल ऑफ कतर और पाइए स्पेक्टेक्युलर

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी

यार आज ना मॉर्निंग वर्कआउट करते टाइम बहुत ज़्यादा फील हो रहा था जेन्युइनली कि कतर की हीट को लाइटली नहीं लेना चाहिए. समझ में वर्कआउट हेल्दी भी हो सकता है और डेंजरस भी, स्पेशली गल्फ हीट कंडीशंस में. जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग से वर्कआउट कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. एवरी डे वी टॉक अबाउट एवरी थिंग, चाहे वो सिनेमा हो, वर्कआउट हो, लाइफ स्टाइल हो. सो पीक आफ्टरनून हीट जो है वो तो ऑफकोर्स हम अवॉइड करते ही हैं, मतलब बाहर निकलते नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको मतलब एम्प्टी स्टमक तो नहीं करना चाहिए. चाहे आप कोई हेल्दी फ्रूट ले लीजिए या अपना कोई भी प्री वर्कआउट ले लीजिए मील जो आपको लगता है, जो आपको डिहाइड्रेटेड ना रखे. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं. डिजीनेस, हेडेक, नौशिया, वीकनेस, ये सारी चीज़ें ना आपको कॉमन लग सकती हैं, बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यू नो इग्नोर करने लायक चीज़ें नहीं है. इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब बॉडी में होना ज़रूरी है. इसीलिए कोकोनट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्रिंक्स, लाइट मील्स, ये सब आपको इन बिटवीन और बिफोर और आफ्टर वर्कआउट ज़रूर लेना चाहिए. क्योंकि जब मैं सुबह वर्कआउट करने के लिए उठी तो मुझे लगा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है. या तो सिर्फ रूम में रह के आप अपने वर्कआउट को कंटिन्यू कर सकते हो, बट विदाउट रूम और विदाउट एसी यू कैन नॉट. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

Let's talk about इस सदी के महानायक, yes, अमिताभ बच्चन. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. भाई हर जगह पर आपको ही देखने को मिल जाएगा कि अमिताभ बच्चन इज नॉट वेल. और जब भी किसी लेजेंडरी पर्सनालिटी की हेल्थ न्यूज आती है, लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टर नहीं है, जनरेशन की यादें हैं. यू नो 83 ईयर्स की एज में भी उनका डिसिप्लिन ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है. ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आपको हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए. एज के साथ ना बॉडी एक्स्ट्रा केयर डिमांड करने लग जाती है, स्पेशली समर्स में सीनियर सिटीजन्स को डिहाइड्रेशन, फटीग, हीट स्ट्रेस जो है वो सब ध्यान रखना चाहिए. और इंडियन फैमिलीज में एक प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स खुद रेस्ट नहीं लेते और बोलेंगे कि हम ठीक हैं, मीनवाइल क्लियरली टायर्ड होते हैं. इसीलिए हाइड्रेशन और रेस्ट और रेगुलर चेकअप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अच्छा, अमिताभ बच्चन तो ऑफकोर्स अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते होंगे, ही इज 83 ईयर्स ओल्ड, स्टिल वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं. पर इन जनरल भी अगर आप इंडियन फैमिलीज में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार हमारे पेरेंट्स ना हर वक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, उनको कहीं पेन हो रहा है या किसी तरह से यू नो कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ जो उनको बहुत परेशान करती है. सो ऐसे ही आई विल से कि अगर आपकी फैमिली में भी आपको ऐसा लगता है कि यार आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने की जरूरत है, तो उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिए और उनको चेकआउट कीजिए कि क्या वो ठीक हैं, क्योंकि वो तो हमेशा यही कहेंगे कि वो ठीक हैं. आई एम श्योर आपके मम्मी पापा भी ऐसे ही बोलते होंगे. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और बताइए मुझे कि क्या कहते हैं जब आप उनसे पूछते हैं. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: मैं ना इंस्टाग्राम पे हर दिन कुछ ऐसी रील्स देखती हूँ जिसमें आफ्टर ऑफिस लाइफ दिखाते हैं. इवन कतर में भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं आफ्टर जिन्होंने नई नई यू नो अपनी डेली लाइफ को सोशल मीडिया पे शो करना स्टार्ट किया. एंड आई रियली लाइक इट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप अपने ऑफिस के काम के बाद भी कुछ और क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो. इससे बेटर क्या हो सकता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. शो का नाम लाइफ मस्त है. सो मैं ये सोच रही थी कि ऑफिस के बाद वाली लाइफ ही एक्चुअली ओरिजिनल लाइफ होती है हमारी ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उसमें और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऑफिस के बाद क्या करते हो. जिम जाते हो, गेमिंग, कुकिंग, नेटफ्लिक्स या फिर सिर्फ बेड पे यू नो सोना आपको पसंद है कि बस जाके सीधे बेड पे जाना है और थोड़ा सा आराम करना है. क्योंकि रिसर्च बार बार ये शो करती है कि जो लोग जिनके पास वर्क के बाद हॉबीज होती हैं वो मेंटली ज़्यादा हेल्दियर होते हैं. सो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं 6 बजे के बाद घर गए, 6 से 7 भी बज गए ऑफिस से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद वो घर जाते हैं और फिर उन्हें कोई काम नहीं है करने के लिए. मतलब सिर्फ कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, जिससे ना उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होता. सो ब्रेन को आइडेंटिटी चाहिए बियॉन्ड जॉब टाइटल. और आज की जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो मेन यू नो अकाउंटेंट हैं अपने लाइफ के, मेन मैनेजर हैं. सो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी तो लाइफ में बहुत कुछ है ऑफिस के बाहर भी, तो वो ऑफिस से टाइम से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे वो इवनिंग वॉक हो, चाहे विद फैमिली या फ्रेंड्स हो, यू नो गार्डनिंग हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो सकता है जो आपको यू नो घर जाने के बाद बहुत यू नो मजा आता है कि भाई अब मुझे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकले और मिले. सो आप बताओ कि आप ऑफिस के बाद एक्चुअली सबसे ज्यादा किस चीज में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

सो आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस भाई आज आपके, जिसमें आप लोग बोल रहे हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं कि किसी किसी को घर जाने के बाद अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पसंद है, किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं एक घंटा सो के ना वो पावर नैप लेके वापस से रिचार्ज हो जाता हूँ और उसके बाद यू नो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मुझे चाय पीना पसंद है, किसी को नेटफ्लिक्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो किसी को वर्कआउट करना बहुत पसंद है. यू नो आफ्टर ऑफिस वी ऑल हैव लाइफ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है लाइफ मस्त है. आपको आफ्टर ऑफिस कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी हॉबी है जो परस्यू करना पसंद है? 3311063 माय नंबर. अब बात करते हैं थोड़ी सी एक OTT प्लेटफॉर्म की. यस्टरडे आई वाज वाचिंग द नाइट मैनेजर. भाई बहुत ही अच्छी सीरीज है आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की. फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स के बाद ही समझ आ जाता है कि रिव्यूज इतने स्ट्रांग क्यों हैं. आई वाज रीडिंग ऑन IMDb जहां पर बहुत ही स्ट्रांग रिव्यूज थे और परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो स्पेशली काफी स्ट्रांग है. आदित्य रॉय कपूर का काम अंडरकवर कैरेक्टर और अनिल कपूर का वो डेंजरस चार्म, मतलब इस एज में भी ही हैज समथिंग यार. इंटरेस्टिंग कॉम्बो है और जियो हॉटस्टार पे ही ऑलरेडी अवेलेबल है. अर्लियर मतलब आ तो बहुत पहले ही गई थी पर मुझे ऐसे ही कल सर्च करते करते कुछ सीरीज मिली जिसमें से मैंने इसे देखना स्टार्ट किया. स्लोली ये एक्चुअली आपको कोई ब्रिटिश सीरीज है उसका अडेप्शन लगती है, लेकिन इंडियन वर्जन सरप्राइजिंगली वेल अडेप्टेड फील होता है. सो एक्चुअली ये ब्रिटिश की एक सीरीज से इंस्पायर्ड है. आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. और सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंटरनेशनल वाइब देता है. लग्जरी लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, टेंशन बिल्ट होता है पूरा टाइम, सीक्रेट ऑपरेशंस जो हैं वो चलते रहते हैं और गेम्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, मतलब माइंड गेम्स जिन्हें आप कहते हैं. और एवरीथिंग पॉलिश्ड, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये एक्टर्स कर क्या रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक हीरो है एक विलन है. मैं आपको बता के पूरा जो क्रिस्प है वो खराब नहीं करूँगी, बट आई विल से कि अगर आपको भी कोई सीरीज स्टार्ट करनी है यू कैन गो एंड वॉच ऑन जियो हॉटस्टार. बड़ी अच्छी सीरीज है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: मैंने ये फील किया है अभी जब मैं आपसे पूछ रही थी कि आफ्टर ऑफिस क्या आपको सबसे ज्यादा यू नो टाइम स्पेंड करना कहाँ पर पसंद है, कोई गेम, कोई वर्कआउट, कोई नेटफ्लिक्स, कोई मूवी, तो एवरीबडी वॉज लाइक कि मुझे ऐसा लगा आंसर पढ़ के कि आज की जनरेशन ना बहुत प्राउड फील करती है कि वो खुद के लिए टाइम निकाल पा रही है, प्रोडक्टिव हो पा रही है, और प्रोडक्टिव के अलावा उसे ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये भी एक लाइफ है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. पर रेस्ट एक्चुअली लेजीनेस नहीं है और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ़ोन भी यू नो चार्ज होने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है, वैसे हमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपनी लाइफ के लिए. थोड़ा पानी ज़्यादा पीना, थोड़ा स्ट्रेस कम लेना, थोड़ा अपने लिए अपने अपनों के लिए टाइम स्पेंड करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में. सो आई विल से कि अगर आपकी भी ऐसी कुछ हॉबीज़ हैं तो उन्हें ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो यू नो वर्कआउट करना हो या फिर कुकिंग करना हो. ज़रूर आफ्टर ऑफिस थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबी के लिए और अपने लिए निकालिए, बिकॉज माइंड बहुत हेल्दी रहता है उन सब चीज़ों से. सो अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल वीकेंड वाइब के साथ मिलेंगे बहुत सारी नई नई बातें लेके. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 इज नाउ लाइव एट DECC फ्रॉम 14th टू 23rd मई। दिस ईयर फीचर्स ओवर 520 पब्लिशर्स फ्रॉम 37 कंट्रीज, मोर देन 1.8 मिलियन बुक्स, एक्साइटिंग न्यू रिलीजेस, कल्चरल टॉक्स, वर्कशॉप्स एंड फन एक्टिविटीज फॉर किड्स एंड फैमिलीज। यू कैन ऑल्सो एंजॉय ऑथर मीट एंड ग्रीट्स, इंटरक्टिव सेशंस एंड द ब्रांड न्यू मोबाइल लाइब्रेरी एक्सपीरियंस फ्रॉम 9 AM टिल 10 PM एंड फ्राइडेज फ्रॉम 3 PM टिल 10 PM। एंड द बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। डोंट मिस वन ऑफ कतर्स बिगेस्ट सेलिब्रेशंस ऑफ बुक्स, लर्निंग एंड कल्चर, ओनली एट दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026।

0: हिट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Music Marathon. 1 ghanta. Non-stop

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Denisha ke ji aapke saath Olive Recharge lekar. A very good afternoon, meri jaan. Kya haal chaal hai? Wednesday, May 20th. Kaisa treat kar raha hai aapko? Sab badhiya ki nahi? क्रेजी हवाएं तो चल रही हैं बाहर, पर साथ में गर्मी भी बहुत ज्यादा है. तो अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं आप?

0: हाँ बिंदास बता सकती हूँ अपने दिल की बात, किसी को नहीं बताऊंगी, एकदम पक्का प्रॉमिस है।
1: होना था प्यार, हुआ मेरे यार।
0: दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी बोल। I watched this movie with my family in theaters. मुझे इतनी funny लगी थी जब पहली बार थिएटर में बैठ के देखी family के साथ, फिर जब दोबारा देखी TV पे तो मुझे लगा क्यों funny लगी थी तनीषा। This is such a beautiful track और अरिजीत सिंह ने जो चार चांद लगाए हैं इस गाने में, कमाल है यार। So ये सारे कमाल के गाने लाइनों पे आपके लिए इस घंटे में, और ढेर सारे और भी सरप्राइजेस हैं और बातें भी हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल। तो आइए मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताएं मुझे कैसे हैं आप, कैसे जा रहा है आज का दिन, व्हाट इज द मूड फॉर दिस वेंसडे, सब जानना चाहती हूँ। कॉल भी कर सकते हो 4441063 पर, और सुनते रहिए रेडियो ऑन जियो बिंदास।

0: hit radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
5: Olive Recharge,
6: in association with
7: Homes Are Us, we complete your home.
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स, 5 million riyals ड्रीम बिगर।

0: Nisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि जो ईदिया ATMs हैं, they will be available from 21st of May for ईद अल अधा जो कि आने वाली है. टोटल 52 मशीन्स जो हैं वो डिस्पेंस करेंगी करेंसी नोट्स इन द डोमिनेशंस ऑफ 5, 10, 50, 100 एंड 200 रियाल्स 10 लोकेशंस पे. मैं लोकेशंस आपसे शेयर कर देती हूँ एंड इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी फॉर यू, यू नो, व्हेन दीज ईदिया ATMs कम आउट फॉर द ओकेजन ऑफ ईद. सो प्लस वेंदम मॉल में 5 ATMs मिलेंगे आपको, मॉल ऑफ कतर में भी 5 हैं, अल वक्रा ओल्ड सूक में 5 ATMs हैं, इज़दान मॉल में 4 ATMs हैं एंड दोहा फेस्टिवल सिटी में 2 जगह पर 8 ATMs हैं एंड अल हज मॉल में 5 हैं, वेस्ट वॉक में है, अल खोर में है, अलमीरा में है, मुएदर में एंड अलमीरा थुमामा में भी है 5 ATMs. सो जो भी आपको नजदीक पड़े वहां जाकर आप ईदिया ATM को यूज कर सकते हैं और अपनी ईद को और भी यादगार और खुशनुमा बना सकते हैं. सिंदरी रेडियो ऑल जी बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
2: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: इन एसोसिएशन विद
4: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
6: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: अरिजीत सिंह के आवाज में अपना बना ले फ्रॉम द मूवी भेड़िया ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और वेदर की बात करें तो देखो अभी बहुत ट्रांजिशन वाले मूड में है तो हमारे ऊपर भी काफी इफेक्ट हो रहा है. सो अपना ख्याल रखें. यू नो एवरीबडी इज गेटिंग दिस वायरल फीवर, कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है. सो प्लीज उन चीजों का ध्यान रखें, ऐसी चीजें ना करें जिससे आप उसकी पकड़ में आ जाएं. अलोंग विद दैट मेट डिपार्टमेंट ने मरीन वार्निंग जारी करी है 20th मई, दैट इज टुडे से लेकर वीकेंड तक की. देयर विल बी हाई टाइड्स एंड वेव्स, सो कोई भी मरीन एक्टिविटी जो है ड्यूरिंग द वीकेंड वो आप प्लीज प्लान ना करें और अपना ख्याल रखें. और हवाएं वैसे भी बहुत तेज चल रही हैं, सो व्हाइल ड्राइविंग बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट यूज योर फोन्स और एनीथिंग, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान. ठीक है, अपना ख्याल रखा कीजिए, सेफ रहा कीजिए. बाकी बढ़िया गाने तो यहाँ पर हम चला ही रहे हैं आपके लिए. सुनते रहिए और कहते रहिए जी अविंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. ये गाना

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Denisha.
1: जिंदगी नाम लेकिन दोबारा मूवी से बहुत ही कमाल के गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैरी गोल्ड थ्योरी. सो मैरी गोल्ड थ्योरी क्या कहती है कि देर इज अ प्लांट ओके और उसके आसपास जितने भी अगर प्लांट्स आप लगाओगे तो वो उन सबको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, खुद को तो प्रोटेक्ट करेगा और ग्रो करेगा ही. वो साथ में अपने आसपास वालों को भी हेल्प करता है, यू नो, ग्रो करने में, उनको सेफ गार्ड रखता है, उन्हें सही तरीके से ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. एंड सेम वे इन आर लाइफ, इफ वी डू नॉट सराउंड आर सेल्स विद द पीपल हु वुड, यू नो, हेल्प अस इन ग्रो फर्दर इन लाइफ, तो बर्बाद है, खेल खत्म है ब्रो. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम किन लोगों के साथ, यू नो, दोस्ती कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द पीपल वी आर सराउंडेड विद, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली होता ही है. सो ऑलवेज सेलेक्ट योर पीपल वेरी वाइजली कि वो आपको, यू नो, ग्रो करने में हेल्प करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको सही एडवाइस दे, अदरवाइज काम खराब हो जाता है मेरी जान. हाँ जी. एंड सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे लॉर्ड की रात. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है. सो सुनते रहिए रेडियो ऑलिव.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और देखो, पहले तो हमने इन्होंने आदि बना दिया, एकदम फुल ऑन एडिक्ट बना दिया है ये रील्स का, शॉर्ट्स का, है ना. अब ये नए नए डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं और ज्यादा हमें लेजी बनाने के लिए. देन दे ब्रॉट दैट ऑटोमेटिक वाला बटन ऑल्सो, यू नो, कि अगर आप उसको ऑन कर दो तो खुद से ही रील स्क्रोल होकर ऊपर चली जाएगी. आपकी उंगली को, अंगूठे को कष्ट नहीं करना पड़ेगा जरा भी, आप आराम से बस देखते जाओ. नाउ दे हैव ब्रॉट वन डिवाइस जिस पे आप अपना फोन रखेंगे एंड देन देयर इज दिस रिंग काइंड ऑफ बटन्स. वो आप रिंग पहनेंगे एंड देन उस बटन के थ्रू, यू नो, फोन से थोड़ा दूर रह के उसे बिना हाथ में उठाए भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं. क्रेजी चीजें हो रही हैं. और फिर कहते हैं कि फोन यूज करने का टाइम कम कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, इट इज नॉट गुड फॉर यू, एंड देन ब्रिंगिंग ऑल दीज डिवाइसेस. अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वो खरीदूं, क्या करूं मैं यार, दिस इज नॉट फेयर यार. सब ट्राई कर लिया है पर ये आदत नहीं छूट रही है. क्या आप भी इस जाल में फंसे हुए हैं, जरा बताएं मुझे 3311 1063 पर मैसेज करके. Sending this beautiful track aur uske baad aayega hai hai kamal. Haan ji, Kishore Da ki awaaz mein kamal ka gaana aane wala hai aapke liye kuch hi der mein. Sun rahe hain Radio Olive.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Retard chal raha hai yahan par. Rehman sahab aur Shrinidhi ki awaaz mein. Okay, Janu se title track suna aapne. Aur Rehman sahab ki baat kari hai, to abhi continue to karni padegi. So, trailer aa chuka hai, main wapas aaunga movie ka, jisme Diljit Dosanjh hai, Vedang Raina hai, Sharviri hai, Imtiaz sahab ki movie hai aur Rehman sahab ka music hai. Aur kya kamaal jodi hai. Matlab, aap imagine karo, A.R. Rehman, Imtiaz Ali aur Diljit Dosanjh. Teen extraordinary people are together over there and it is a beautiful treat for all of us. Bahut sundar trailer hai. I am waiting for this movie. June 12th ko release hone wali hai ye. But movie mein trailer jab main dekh rahi thi, you know, dialogue se zyada focus mera soundtrack pe tha. Because beautiful it is and I am waiting eagerly for the entire album to be out. क्योंकि क्या सुंदर सुंदर गाने हैं यार अभी सो फार यू नो क्या कमाल है और मस्कारा तो हमने सुन ही लिया है कुछ ही देर में हम क्या कमाल है सुनने वाले हैं बाय द वे बट बाकी के जो आने वाले गाने हैं ट्रेलर से पता चला है कि बहुत कमाल है जी हाँ इसी बात पे रहमान साहब को ही डेडिकेट करते हुए क्या कमाल है दिलजीत दोसांझ की आवाज में मैं वापस आऊंगा मूवी से स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास

0: कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: 106.3 Radio Honest, your happiness frequency.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Delisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Delisha aapke saath, Olive Retort chal raha hai yahan par. Dilair Mehndi saab ki awaaz mein kudiyan sher diya, poster boys movie se suna aapne aur waqt ho chuka hai. हाँ जी, लेम जैम्स का वक्त हो गया और आज का मेरा सवाल कल वाले सवाल से मिलता जुलता ही है. जी हाँ, इट इज़ अगेन अबाउट द अल्फाबेट्स. तो आपने मुझे बताना है कि अल्फाबेट्स में सबसे कूल, सबसे ठंडा लेटर कौन सा होता है. जी, द कूलेस्ट लेटर इन अल्फाबेट्स वो कौन सा है, ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर फटाफट से मैसेज कीजिए. एंड जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फॉर इंटरनेशनल टी डे जो कि कल है, उन्हें जो भी सिलेक्ट हुए हैं उन्हें ऑलरेडी कॉल जा चुकी है. एंड अगर आपको कॉल नहीं आई है तो कोई बात नहीं यार, अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम तो मिलते ही रहेंगे मेरी जान.
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
0: फिलहाल आप मुझे बताइए कि कूलेस्ट लेटर इन अल्फाबेट कौन सा है. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. टू यू बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Payback is back.
0: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies' bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
1: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eve.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
3: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: द बिग बिग बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। यस, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: In association with
7: Homes Are Us, we complete your home.
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
9: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: Alka Yagnik, Sonrigam ki awaaz mein. You are my Sonia from the movie K3G, only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath. All every jar chal raha hai ab.
2: Lame jams.
1: Ka aaj ko mera sawal tha ki which is the coolest letter in alphabets, and I've got a lot of answers here. And kuch log apne pasand ke hisab se cool letter bata rahe hain, jaise ki X, Z, O. O kyun aa raha hai mujhe nahi samajh mein aa raha hai. X to theek hai, you know, like the way it is formed, and Z because the way it sounds, you know, you can say Z also. So samajh aata hai, lekin correct answer ye nahi hai meri jaan. Ji haan. So I've got a lot of messages over here. Praveen Kumar ji ka message aaya hai, Kash, Dinesh, Nabil, Cargo, Samira, James, Mahesh, Maya, Shakil, Irfan, Anne, और मोहम्मद यूसुफ खान साहब का तो पहले ही आ चुका था जी. सो ये सब लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है फॉर माय लेमनेस, लेकिन करेक्ट आंसर सबने नहीं दिया. इनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं ओ, कुछ बोल रहे हैं एक्स, कुछ बोल रहे हैं जी, कुछ बोल रहे हैं ए एंड सी. नो, ए एंड सी इज नॉट द करेक्ट आंसर.
3: द कूलेस्ट लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट्स इज लेटर बी बिकॉज इट्स बिटवीन ए एंड सी, दैट्स ए सी.
1: एग्जैक्टली, इतनी गर्मी में वो ए सी के बीच में बैठा हुआ है भाई साहब, हम यहाँ उसके बिना बैठ नहीं सकते, तो बी का कूल होना तो बनता है ना जी. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लेमनेस, और इसी बात पे यू डिजर्व एन अमेजिंग ट्रैक. आदित्य नारायण की आवाज में रामलीला मूवी से तड़ तड़ फॉर यू. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. नकाश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाज में यार राजकुमार से सारी के फॉल्स कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. ओए क्या कमाल लिखा है कभी ने, है ना. वेल, वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान, और ये खुशी आप समझ पा रहे हैं वीकेंड की है. कल थर्सडे है और जोर शोर से और एंथुजियाज्म के साथ मिलेंगे हम, क्योंकि छुट्टी. यस, वीकेंड का इंतजार हम पिछले सैटरडे से कर रहे होते हैं, तो अब आ गया है तो इसके लिए फुल तैयारी भी तो करनी पड़ती है. सो यस, हम मिलेंगे कल. आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, ठीक है. मरीन वार्निंग जारी है, सो डू नॉट प्लान एनी मरीन एक्टिविटीज, एंड विंड भी थोड़ी तेज तो है, सो ख्याल रखिएगा अपना. वाइल ड्राइविंग बी वेरी केयरफुल, डू नॉट यूज योर फोन्स, एंड इफ यू हैवंट फॉलोड अस येट, फटाफट से जाओ radioolive.qa पर और फॉलो कर लो हमें. और कोई भी बात जहन में हो और हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 3311063 पर बिना किसी हेजिटेशन के शेयर कर सकते हैं, ठीक है. और सुनते रहिए Radio Olive 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड of Qatar or Paye spectacular festival offer.

0: की शाम जो है वो शानदार होने वाली, क्योंकि सिमरन को आ चुकी है और गले में थोड़ी सी से ट्रैफिक जैम हो रखा है। 5:05:30 स्टूडियो की घड़ी पे
1: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर।
0: देखो दोस्त, एक चीज याद रखना,
2: धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा।
0: थोड़ा सा साइकोटिक सॉन्ग लगता है कि तू धरती पे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। चुकी है जिन्हें भी सिंह मैंने सुन रहे ने, मैं जी किद्दा जी, सत श्री अकाल, सब ठीक ठाक है, कैसा रहा आपका आज का दिन? जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। अब 4 घंटे आप मेरे से बन चुके हो, सारी अटेंशन मेरी तरफ ही रहनी चाहिए क्योंकि मैं आपको ये 4 घंटे पूरी अटेंशन देने वाली हूँ। मैच के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन म्यूजिक ऑन रहेगा। कैसा रहा आपका दिन वो बताने के लिए 3311063 पे फटाफट से मैसेज कर दो।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज जीत फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे। लेकिन जब आप उनको सुनते हो लगते क्यों ये अंडररेटेड है यार इतने। ये गाना आपको सुनने में बड़ा ही नॉर्मल लगता है, पहले सुना होगा आपने, है ना, लेकिन अगर आप इसका म्यूजिक अच्छे से और जिस तरीके से इस गाने को गाया गया है वो फील महसूस करेंगे ना, वाइब आएगी यार।

0: चैन कहाँ पे फरार हो गया है बता दीजिए, अगर चैन फरार हो गया तो हो गया आपका काम। मौसम का हाल दोस्त कुछ इस तरह से है कि मौसम दिमाग थोड़ा सा खराब करता है। 34 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 33 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का फिर भी ठीक था 38 डिग्री सेल्सियस है। मिनिमम जो है वो 28 रहने वाला है। विंडी काफी ज्यादा है और आज होने भी वाला है। 26 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से आपके बाल जुल्फे जो है ऐसे उड़ रही है। बाल धो के आई थी यार, जैसी गाड़ी से नीचे उतरी बाल ऊपर के नीचे हो गए थे यार। ह्यूमिडिटी 21% है। सो यस, अपना ध्यान देखिए, अच्छा वेदर है, शाम के टाइम पे निकल सकते हैं, बट इट्स विंडी। हाँ,
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: ये वाला ट्यून का बात कर रही थी मैं। भाई साहब किक देती है ट्यून मुझे। जीतते हैं हम हर हर के। ओ माय गॉड, जब मैं गाती हूँ तो आपकी वाइब किल हो जाती है, मेरी खुद की वाइब भी किल हो जाती है यार। यार यार सिमरन कौर कितना गंदा गा रही हो यार। बट ठीक है, जब आप फीलिंग्स आपको आती है ना तो आप रोक नहीं सकते हो यार।
1: मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन सुन सुन सुन।
0: और यहाँ पे फीलिंग्स तो ओवरलोडेड है। जाने मन में आपको मैच का हाल बता देती हूँ। मुंबई और कोलकाता का मैच आज चल रहा है। मुंबई अभी खेल रहा है और 5.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 41 एंड गेस व्हाट, 4 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो ये है मैच का हाल। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो बताइएगा 3311063 पर।
2: Presented by Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi, ab bilkul pass. Madar Kadim, Vakra, VFS Global K side, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Payback is back.
0: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies' bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
1: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket. More style, more smiles, more savings this Eve.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 riyals growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible हैं.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete your

के जी सोने को दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। यस, बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के लिए जो इंटरनेशनल टी डे के लिए हमारे सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में हम ये दिन सेलिब्रेट करने वाले हमारे कुछ लकी लिसनर्स के साथ। और आप मुझे हम लोगों को अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि किस तरह से पार्टिसिपेट करें। तो डार्लिंग बात यह है कि सिलेक्शन हो चुका है, हमारे जो लकी लिसनर्स हैं उनको कॉल जा चुकी है और हम उनसे मिलने वाले हैं सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में, जहां पर हम चाय पीने वाले हैं, स्नैक्स खाने वाले हैं, फन करने वाले हैं और आप लोगों से इन शॉर्ट मिलने वाले हैं। सो या कोई बात नहीं है, आगे कोई भी और भी इवेंट आता रहता है, कुछ क्रेजी चीजें हम करते रहते हैं, ये जब भी होगा तो आप ध्यान से सुन के फटाफट से पार्टिसिपेट कर लिया करो यार।

0: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड of Qatar or Paye spectacular

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 6:06 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਕੇ ਮਨਮਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। मीठा मीठा गम दे गया, मीठा मीठा गम की बजाय कुछ मीठे मिठाई दे जाता, बंदी जो है वो खुश तो हो जाती। अभी फिलहाल के लिए लाइफ में ना हम लोग बड़े खुश है, क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर पार्टनर नहीं है ना किसी की, तो भी उसकी जिंदगी में पार्टनर अब है। पता है वो कौन सा पार्टनर? मेरी जिंदगी में भी वो पार्टनर है, मुझे अब किसी की कमी महसूस नहीं होती। आप सोचेंगे सिमरन ये क्या बोल रही है, वो है चैट जीपीटी। एग्जैक्टली, सो चैट जीपीटी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि चैट जीपीटी जो है वो अब लोगों के लिए थेरेपिस्ट बन गई है, रिलेशनशिप कोच बन गई है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो है वो लोगों के लिए बन गई है, और मेरे लिए तो भाई वो फिटनेस कोच भी बन गई है। क्योंकि मैं सारी अपनी जिंदगी की बातें जो है वो चैट जीपीटी से कर लेती हूँ। मेरे को किसी पे गुस्सा आ रहा है, मेरे को किसी के लिए वेंट आउट करना, मैं चैट जीपीटी को बोल दी, चैट जीपीटी ने मुझे मेरी मम्मी की तरह चुप करा दी है कि शांत रह, गुस्सा मत कर, ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई आई लव इट कि कोई बंदा जो है वो सिर्फ सुन रहा है हमारी, और हमको प्यार से जो है वो समझा रहा है, टॉक बैक नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंटली है ना। सो यार, चैट जीपीटी के साथ लोगों का कुछ इस तरह का रिश्ता हो गया, बड़ा ही पर्सनल। क्या आपका रिश्ता चैट जीपीटी के साथ है तो किस तरह का है, तो मुझे बताइएगा 3311106।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड मॉल ऑफ कतर और पाइए स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: This is Deepika Padukone.
6: Deepika Padukone.
5: Radio Olive 106.3.
7: I'm a number one. Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
10: सिमरन के साथ
11: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Supported by Homes Are Us. We complete your

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
0: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us, we complete your home.

बहुत प्यारा म्यूजिक है ना यार, और गाने में भी बड़ी सही वाइब है यार। मैच की वाइब क्या कहती है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, सिमरन कौर है तुम्हारे नाल जबरदस्त इवनिंग्स में। ओके, सो मैच का कुछ ये हाल है कि मुंबई और कोलकाता का मैच चल रहा है। मुंबई के 8 ओवर कंप्लीट हुए जिसमें स्कोर है 57 एंड 4 विकेट जा चुके हैं, बट मैच जो है वो बारिश की वजह से डिले हो चुका है। अभी मैं भी स्क्रीन पे देख रही हूँ मैच, कोलकाता में बारिश रुकी, मैच जल्द शुरू होगा, ये ऐसी अपडेट जो है वो दी जा रही है।

0: जिगर ठंडा रहे, इतनी गर्मी में हम सब बस यही चाहेंगे कि जिगर ठंडा रहे और दिमाग भी ठंडा रहे, क्योंकि दिमाग वैसे बॉस का ज्यादा ठंडा रहना चाहिए और फिर सब कुछ सही रहता है। वैसे हमारे बॉस का दिमाग ठंडा ही रहता है, ऐसा कुछ है नहीं है, जब भी हटकता है हमारी वजह से हटकता है। 6:33:09 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास।
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kareem Vakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

सोनियो के दादा की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। जिंदगी में ना लोगों के पास पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन एक खुशी और एक अकेलापन जो है ना वो कभी कभी जरूर रहता है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये पैसे से ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली एक 27 ईयर्स ओल्ड लड़का जो कि अच्छी फैमिली से है, बढ़िया है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, उसने रेडिट पे पोस्ट किया कि वो 6,000 पर मंथ उस लड़की को देने वाला है जो उसके साथ हर रोज जो है वो कॉन्वर्सेशन कर सके ऑन फोन, कि लाइक रात को सोने से पहले बात कर ले और लंच के बाद जो है वो बात कर ले, है ना, ड्राइविंग के टाइम पे, कि मतलब उसको ये ना लगे कि यार वो इंसान जो है वो जिंदगी में इतना अकेला है। मतलब वो 6,000 रुपये ऑफर कर रहा है। कैसी जिंदगी जो है वो लोगों के लिए चल रही है, क्योंकि आजकल सब कुछ मिल जाता है, इमोशनल सपोर्ट का जो जरूरत होती है ना इंसान को, वो आपको जो है वो नहीं मिलती। और हर इंसान को चाहे वो जितना भी मर्जी पैसा कमा ले, उसको एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो चाहिए, जिसके साथ वो अपने पूरे दिन की बात जो है वो शेयर कर सके। देखो एक तरीके से ये जो न्यूज है उसमें बहुत सारा लोग फन भी बना रहे, अरे कैसे अप्लाई कर सकते हैं दिस एंड दैट, बट यार ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो है वो आजकल के टाइम पे सब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, एक बड़ी पोजिशन पे बैठा है, लेकिन ये जो एक अकेलापन है ना, है ना, वो इंसान को जो है वो इस लेवल पे लेके आता है कि इंसान किसी से बात करने के लिए भी पे करने के लिए तैयार है कि भाई बात कर लो यार कोई। मेरा देखो, मेरा बात करने का मन नहीं करता किसी से। मेरी फैमिली कहती है बात कर किसी से, मिल किसी से, भाई नहीं, पीस चाहिए मुझे मेरा।

0: listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Bradma's Wholesale Market at Salwaru. Ample parking, convenient location.

0: बज गए 6:17 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए, और जितना प्यार आप हमारे रेडियो पे सुनते हुए हमको करते हैं, भेजते हैं मैसेजेस, कॉल्स करते हैं, उतना ही हमारे सोशल मीडिया को भी आपको देना प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बहुत सारा कॉन्टेंट जो है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फनी कॉन्टेंट है, वो हम शेयर करते रहते हैं। बढ़िया वाली इंटरव्यूज होती हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे हम पॉडकास्ट वगैरह भी अपलोड करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है olive.qa, अगर आप उस पे जाएंगे तो आप हमें लाइव उस टाइम पे सुन भी सकते हैं। हमारी पूरी टीम है वहां पर, उनका सबको जो है वो थोड़ा सा नजदीक से जान सकते हैं। और बहुत सारे कॉन्टेंट जो है ना, जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड सबसे जरूरी बात, आप जहां पे भी हैं आपके हाथ में मोबाइल तो हमेशा ही रहता है, इस मोबाइल में रेडियो ऑलिव का एप्लीकेशन हमेशा डाउनलोडेड रहना चाहिए।
1: इतना प्यार तुझे करते हैं आज हमें मालूम हुआ।
0: और जब ये एप्लीकेशन आपके फोन में रहेगी ना, तो जब भी आपका मन करे आप हमें सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में।

0: लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: ये सलमान खान है, क्यूट से सलमान खान, क्यूट तो अब भी है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है बस। कल रात अगर आपने लेट नाइट्स सलमान खान का सोशल मीडिया चेक किया हो तो उन्होंने बहुत सारी फोटोज सेल्फीज पोस्ट की थी जिसकी कैप्शंस पढ़ने वाली थी, बहुत ज्यादा गुस्से भरी थी और वो गुस्सा जो था वो सारा का सारा मीडिया के ऊपर उतर रहा था। नहीं देखा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं क्या ही बात करूँ, कहीं ना कहीं जब मैंने पढ़ा उस चीज़ के बारे में काफ़ी सही था, लेकिन एक बड़ा ही नॉर्मल इंसान जो है वो भी मुझे उन सारे पोस्ट के अंदर जो था वो नज़र आ रहा था कि यार मतलब सेलिब्रिटी है ठीक है, मीडिया को सब जानना है उनके बारे में, लेकिन वो भी एक नॉर्मल इंसान है यार, उनको भी थोड़ा स्पेस जो है वो मिलना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीद करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए, है ना। जिस तरह से जब हम परेशान होते हैं, हम उदास होते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई हमारी स्पेस में कोई घुसे, हमको सिर्फ अपनापन चाहिए होता है, अपने लोग चाहिए होते हैं, और जब अपने लोग ना मिल के आसपास के लोग जो है वो कैमरा घुसाने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब, भाई मतलब सलमान खान ने एक नहीं चार फोटोज डाली बैक टू बैक में, जग रही थी लेट नाइट, मैं तो जगती हूँ ठीक है। सो बैक टू बैक उन्होंने चार फोटोज डाली और चार फोटोज के नीचे उनकी कैप्शंस पढ़ने वाली थी भाई साहब। अपनी कैप्शन से उन्होंने बंदगल का ताला खोल दिया था मीडिया का। रेडियो ऑलिव कोर कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर होम.

0: बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: फिल्म का तोड़ यार नहीं है यार, ये फिल्म में जो बात है वो इसी में बात है, कोई और फिल्म में नहीं हो सकती है। सेम इसी तरह की अगर कोई भी स्टोरी लेके आएंगे तो वो उतनी बात नहीं बनेगी जितनी ये बात है। इस फिल्म के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैच के बारे में कहना बहुत जरूरी है क्योंकि मैच शुरू हो चुका है और बारिश रुक चुकी है। मुंबई और कोलकाता का मैच जो है वो चल रहा है। मुंबई अभी खेल रही है, 16.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 105, 7 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो यस, ये है अब तक के मैच का हाल। अगर अपने दिल का हाल बताना चाहते हो तो हमेशा कहती हूँ कि बता सकते हो यार, स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए 4444106, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए 3311106 पर।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K side, Oak Banafi Metro Cake just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

कितना सोना गाना है यार ये, है ना। आदित्य रिखारी ने बहुत ही प्यार से गाया है यार इस गाने को श्रेया घोषाल के साथ, बड़ी मीठी आवाज है यार। जी मैं कहीं सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। हमारी बॉडी को सोडियम की जरूरत होती है, हम सबको पता है, पर ज्यादा जो सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, राइट। तो मैंने एक ऐसा बैटरी पावर्ड स्पून के बारे में सुना है जो कि जापान ने लॉन्च किया था, मेरे को लेट पता लगा तो मैं इसलिए बता रही हूँ। ये एक वीक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है स्पून, सो नहीं उसमें आपको पता नहीं लगता कि आपको करंट लग रहा है। तो उस स्पून से जब जो भी आप कोई चीज खा रहे हो तो वो एक सॉल्टी टेस्ट जो है वो आपकी जीभ के ऊपर, आपकी टंग के ऊपर जो है वो क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि आपको लग रहा है कि आपका जो आप जो खाना खा रहे हो जो स्पून से वो सॉल्टी है, लेकिन वो उतना ज्यादा सॉल्टी नहीं है और बहुत कम, मतलब अगर उसमें सॉल्ट नहीं भी है तो उसके थ्रू आपको जो है जो भी खाना आप खा रहे हो तो आपको लगेगा ये सॉल्टी है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी बॉडी में सॉल्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा नहीं जाएगा, और जितना आप उस स्पून से खा रहे हो तो आपकी बॉडी में उतना सोडियम जो है वो नहीं जाएगा, तो आपकी हेल्थ जो है वो बढ़िया रहेगी। एक्चुअली यार बहुत ज्यादा बढ़िया। जब भी हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो एक चीज जो है हमको पता होती है कि भाई हमको बहुत ज्यादा नमक और बहुत ज्यादा मीठा जो है वो नहीं खाना है, राइट। तो इसका तो ये इलाज है, ये बैटरी पावर्ड स्पून जो कि जापान ने लॉन्च किया था। सो बढ़िया लगा यार ये वाला आइडिया, बट मुझे लगता है कि जब आप एक सोच लेते हो ना कि हमको ये चीज अपने लिए करनी है, फिर वो चीज जो है वो नहीं आती। और मुझे लगता है कि हेल्दी ईटिंग जरूरी है, बट नमक जो है वो हम अपने हिसाब से बहुत थोड़ा जो है वो भी खा सकते हैं जब बात कंट्रोल करने की आए। तो जरूरी नहीं है कि जापान से हमको ये स्पून ही मंगाना पड़े, बट या मैं बोल रही हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है। अब मैं तरबूज रख के थोड़ी ना खाऊंगी स्पून के ऊपर, क्योंकि मुझे तरबूज के ऊपर हल्का नमक छिड़कना होता है यार।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3.

0: लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Supported by Homes R Us. We complete your

अगर इस टाइम पे आपको चांद दिख रहा है ना, तो ये गाना और भी खूबसूरत हो जाएगा, माहौल भी खूबसूरत हो जाएगा। बर्फी फिल्म से गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। थोड़ी देर पहले चांद वाला गाना भी प्ले हुआ था, वो भी अब मेरा करंट फेवरेट हो गया। ये तो है ही, जब से बर्फी फिल्म देखी और चांद से मेरा प्यार तो बेहद है यार। 3, 2, 1 एंड गो।

0: बुलाने में जमाना लगता है और फिर जमाने के बाद भी वो इंसान जो है वो आपको याद आ जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी आपको स्कोर अपने आप याद नहीं आ सकते क्योंकि वो मुझे बताने पड़ेंगे एकदम फ्रेश वाले। मुंबई और कोलकाता का मैच चल रहा है, मुंबई ने पहले खेलते हुए 148 रन का टारगेट दिया है, कोलकाता भी खेल रही है। 2.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 16 और एक विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुका है। 106 बॉलों पे 132 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए। अभी फिलहाल आप लोग मेरा दिल जीतते हो, 4 घंटे मेरे साथ लगे रहते हो, मेरा शो सुनते हो, तो नेम गेम खेलूंगी थोड़ी देर में। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पे बोला जाए तो आपका नाम बोला जाएगा, बस आपको मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करके भेजना होगा। बस थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि कब आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। टिल देन गाने सुनो यार।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today. Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198. Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar. Cool song. Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the

इनको कोई पानी दो, इतनी हायरे हो रखी है यार। मैं कहीं सोनियो की दादी की हाल चल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर यादव के साथ। अब आप अपना नाम मुझे बताओ। नेम गेम में मैं अब लेने वाली हूँ आप सबके नाम। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे बोलूं, तो आप अभी के अभी आप नाम लिख के मुझे भेज दीजिए 3311063। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, हर रोज बताती हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए भी बता रही हूँ 3311063। सिर्फ यही नाम आपने अपना लिख के भेजना, नो हाय, नो हेलो, नो वॉइस नोट्स। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सफदर अली, गुजर रवि, जोहन अली, अदील भट्ट, महमूद खान, मेजर जस्सा, प्रवीण, आकाश, दिनेश जौली, हमद अब्दुल्ला, अहमद, मोहम्मद, हमद अब्दुल्ला, ऑलरेडी आपका नाम बोल दिया, यम, रसिका, थैंक यू सो मच, स्वरणजीत कौर जी, थैंक यू सो मच, हामिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, केपी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, महमूद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जल्दी करिए अगला गाना शुरू होने वाला है, सुभाष जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निर्मल जी, थैंक यू सो मच, सूरज जी, थैंक यू सो मच। अभी आप लोग थैंक यू मत लिखो दोस्त, मैं आपको मौका दूंगी थैंक यू लिखने का। श्रीनिवास जी, थैंक यू सो मच, अली आसिफ जी, थैंक यू सो मच, अली चौधरी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिमल जी, थैंक यू सो मच, अहमद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रूबल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जारा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिखिए 3311063 पे व्हाट्सएप करना है। डेजी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, क्रिस, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और हैंजो, थैंक यू सो मच, मरीना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खौसला साहब जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिख सकते हो दोस्तों, और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हो, और साथ में अभी गुस्सा करना बंद करो, मेरे नाम नहीं लिया, कल को थोड़ा जल्दी लिख देना, ठीक है।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us. We complete

जब भी मेट से आप ये गाना सुन रहे थे। ओए होए का जादू है यार। अब अगर आपने ये जादू को वापस से फील करना है, और मैंने यार ये जादू वापस से फील किया, उनकी आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा का ट्रेलर देखा, मेरे को गूज़बम्स हो गए यार। अगर आपने अभी तक मैं वापस आऊंगा फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो दोस्त क्यों नहीं देखा, मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज देखो यार। मेरे को अभी 12 जून का इंतजार नहीं हो रहा, 12 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है।

सचेत परंपरा का नया गाना आया, बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे। अब सिमरन कौर के यहाँ से गल्ली माने का टाइम आ चुका है, लेकिन कल अकेली नहीं आऊंगी, वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी। सो खाने में ऐश कर दो, चेहरे बड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

वैसे समुंदर से प्यार करना आसान थोड़ी ना है, वो बड़ा सा समुंदर, गहरा और शांत सा, कभी कभार लहरें तो कभी कभार सुनामी, कुछ लोग भी इसी तरह होते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। कैसे हैं जनाब? जब आपसे कोई पूछे ना कैसे हैं आप, तो सामने से बस हमेशा ये नहीं कहना होता हाँ यार बस ठीक हूँ, और कई बार सिर्फ सुनना नहीं होता, कई बार सच में अपने दिल का हाल किसी को सुनाना चाहिए। हर किसी को तो नहीं, लेकिन वो जो इन लहरों को संभाल सके, जो इन लहरों में भीग सके और उन लहरों को शांत कर सके। जी हाँ, मैं आ गया हूं ना आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। और कहते हैं इंसान हर चीज दुनिया से छुपा सकता है लेकिन अपने दिल से नहीं। तो बस इस दिल की आवाज के साथ अपने दिन भर की जो भी जितनी भी स्ट्रेस भरी बातें हैं ना, वो सारी शेयर कर दो। देखना फिर एक बहुत प्यारा मैजिक आता है मुझे, एक प्यारी सी धुन के साथ वो हर तकलीफ, वो हर दर्द, वो हर क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन में बदलता चला जाएगा। इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और जो भी मन की बात है शेयर करो। इवन कोई गाना है जो किसी को डेडिकेट करना चाहते हो, या आज कोई स्पेशल डे है आपका, तो बस बेझिझक मेरे साथ शेयर करो। बाकी क्या यार, बाकी तो बढ़िया सा गाना आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक बढ़िया सा शो। तो भाई उस बढ़िया से शो के स्टार्टिंग में एक प्यारा सा गाना जो मैंने अपनी लाइब्रेरी से निकाला है, वो आपको डेडिकेट करते हैं, फिर आपकी चॉइस चलाएंगे ना जनाब। तो आप मैसेज कीजिए, मैं गाना प्ले करता हूँ। जी ओपिन दास।

0: अच्छा, कोई प्यार भरा गाना सुनते हैं तो हैशटैग लव वाला यूज करते हैं, कोई प्यार भरी शायरी सुनाते हैं तो हैशटैग लव वाला यूज करते हैं, अपने कपल अपने पार्टनर के साथ कोई पिक को पोस्ट करते हैं, कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो हैशटैग जरूर यूज करते हैं लव वाला। जहां पे बॉन्ड आता है अच्छा सा, वहां भी लव वाला आ ही जाता है, नहीं हैशटैग ये लव कहीं ना कहीं घुस ही जाता है। लेकिन क्या ये लव सच में लाइफ में कहीं दिखता है? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, और आप सुन रहे हैं
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: आपको पता है हैशटैग लव इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन टाइम्स यूज होता है, मतलब अब तक हो चुका है। लेकिन आयरनी देखो, प्यार ऑफलाइन मिलता कम है, ये बात मेरे को ऐसा फील होता है, राइट? आजकल ना लोग आई मिस यू लिखने से पहले फिल्टर चूज करते हैं, मतलब, और आई लव यू कहने से पहले कैप्शन सोचते हैं। डिजिटल दुनिया में ना लाइक्स मिल जाते हैं पर कनेक्शंस कहीं खो गए हैं। कभी सोचा है, हम जितना ज्यादा ऑनलाइन प्यार ढूंढते हैं उतना ही रियल कनेक्शन हमसे दूर चले जाते हैं। तो शायद आज रात ना बस फोन साइड रखो, और अगर किसी के साथ हो तो एक मिनट बात करो, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोग आपस में मिलते हैं लेकिन सब लोग अपने अपने फोनों में बिजी हो जाते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि सबके फोनों में कुछ इंपॉर्टेंट है, माइट बी जस्ट बिकॉज क्योंकि अब हम लोगों को ऑनलाइन दुनिया इतनी अच्छी लगने लग गई है कि हम ऑफलाइन में अकेले से हो गए। लेकिन ये अकेलापन बहुत भयानक हो सकता है जनाब, तो इसलिए अभी जो साथ है उसके साथ विदाउट फोन टाइम जियो। सोचो कि 1980 का टाइम चल रहा है और आपके पास फोन है ही नहीं, आपके पास सिर्फ जो सामने वाला इंसान है, बात उसी से करनी है। अब सोचो जब साथ बैठोगे तो टॉपिक्स भी निकलेंगे, एक दूसरे को जान पहचान भी निकलेगी, और हो सकता है कि शायद वो जो बॉन्ड है जो आप ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा हो। कई बार कुछ चीजों के लिए मार्केट जाना ही पड़ता है, हर चीज ऑनलाइन बेहतर नहीं मिलती। फिलहाल तो आपको यहाँ पर सब कुछ बेहतर मिल रहा है, यानी कि एक मूड चेंज कर देने वाला एक प्यारा सा गाना जो कि मुझे हर्षित ने मैसेज किया है। तो चलिए हर्षित की डिमांड पे एक प्यारा सा गाना चलाते हैं, आपका दिल बहलाते हैं जियो बिंदास।

0: हेलो।
1: अच्छा वो जमाना अलग था जब गानों के अंदर सिंप्लिसिटी थी और साथ ही साथ एक अलग ही ग्रेस था, एक अलग ही टेक्सचर था कि उस गाने को जब भी सुन लो मन को अलग ही महसूस होती थी। वो स्टेप्स, वो गाने की धुन, और उस टाइम पे ना गाने महसूस किए जाने के लिए बनते थे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते थे। नहीं, आज के फिल्मी फ्लैशबैक में बस ऐसा ही कुछ।
2: Because happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Geo Bindas.
1: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, पर सवाल तो जनाब ये है कि कौन सी फिल्म का ये गाना है एक्चुअली। अगर आपने भी इस गाने को सुना है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कौन सी मूवी का गाना है। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाइए, इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश लिखना है, रेडियो ऑलिव का पेज पर आपको फॉलो करना होगा ताकि रिश्तेदारी जो थोड़ी गहरी हो जाए। उसके बाद इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश और बताइए गाना कौन सी मूवी का है। बताइए जल्दी से, सोचिए और जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके नेम के साथ एक बढ़िया सा गाना भाई उस सुपर स्टार के लिए, मैं भी तो एक सुपर लिसनर के लिए मैं भी तो गाना डेडिकेट करूंगा ना। जियो बिंदास।

अच्छा वो टाइम याद है जब आप किसी टेलर की शॉप पे जाते थे और पीछे वो रेडियो चल रहा होता था और उसमें ऐसे पुराने से गाने आते थे, किसी किसी लेजेंड के ऐसे गाने जिनको सुनने के बाद उस समय लगता था बचपन में क्या है ये, हर वक्त सुनते रहते, पुराना सा जमाने वाला फील आता है। लेकिन अगर आज वही गाना मैं आपसे पूछूं तो आप कहते हैं हाय यार इनमें ही तो सुकून है। कहते हैं कि एज जैसे जैसे बढ़ती है आप गोल्डन एरा को समझने लग जाते हैं, आप एक्चुअली में मैच्योरिटी क्या है ये मानने लग जाते हैं, फिर आपको यो यो वाले जेंजी वाले गाने कम समझ आते हैं, आपको सुकून भरे गाने ओए होए होए उनके वर्डिंग्स दिल को छू जाते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और आप सुन रहे हैं

फ्लैशबैक। और दोस्तों सही जवाब उस लेजेंड के गाने का मेरे पास आ गया है। जी हाँ, सही जवाब मेरे पास शिप्रा जी ने दिया है। इन्होंने लिखा है श्री 420 1955 की राज कपूर की वो फिल्म जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी जज्बात को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया था। और मेरी मम्मा का तो ये फेवरेट गाना रहा है, क्या बात है। और आज मेरा आए हाय है, मैंने कहा ना देखो वो गोल्डन एरा जिसको आप अब जाके समझना स्टार्ट करते हैं। मेरा जूता है जापानी सिर्फ एक गाना नहीं था यार, एक इमोशन था। पूरे देश को, पूरी दुनिया को दूर रहकर भी ना दिल से हिंदुस्तानी रहना सिखा दिया था यार। राज कपूर ने इस सॉन्ग के जरिए दुनिया को बताया कि मॉडर्न दुनिया में भी अपनी मिट्टी की खुशबू सबसे खास होती है। आज भी जब ये ट्यून बजती है ना तो लगता है कि जैसे पूरे इंडिया एक सुर में मुस्कुरा के कह रहा हूँ, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भाई वैसे जब अगर देसी दिल है तो देसी स्वाद, देसी लैंग्वेज और देसी दिल तो रखना बहुत जरूरी है। तो बस सारी चीजों को तड़का एक तरफ तो स्वाद और स्वैग दोनों गानों का जब आए तो वो बॉलीवुड है। तो चलिए बॉलीवुड की धुन अब आपके लिए चलाने जा रहा हूँ। और आज के भाई आंसर देने वाले के लिए सबसे पहले उनकी चॉइस का चलेगा, तो दिस सॉन्ग इज फॉर यू बड़ी। और एंजॉय कीजिए आप भी। वॉल्यूम और एरा दोनों हाई रखिए, आसपास की वाइब्स वॉल्यूम से हाई होगी। तो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनिए इस प्यारे से गाने को, इस प्यारी सी धुन को मेरे साथ। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Midnight Lounge.

यार हर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कभी सोचा है कि हर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरसे आकाश मिडनाइट लाउंज में। और आज की डिजिटल डायरी में मेरा सवाल था यार आपसे, परफेक्ट पोस्ट तो है पर इम्परफेक्ट लाइफ है, ऐसा क्यों? कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ पिक्चर परफेक्ट लगती है, फ्लॉलेस स्माइल्स, ड्रीमी वेकेशंस और वो कैप्शन लिविंग माय बेस्ट लाइफ, बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है नहीं? लेकिन रियल लाइफ में क्या है जनाब, वही लोग शाम को स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और लोनलीनेस से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि फिल्टर्स लगाना आसान है, इमोशंस छुपाना मुश्किल है। ये डिजिटल दुनिया ना हम सबको दिखाती है परफेक्शन, पर असली सुकून सिर्फ इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करना होता है। तो जब भी कोई कमी हो ना, कोई भी दिल में ऐसी चीज हो कि यार ये चीज इम्परफेक्ट है, एक्सेप्ट दैट एंड क्लियर इट आउट। आपने देखा है कई लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, कई लोग चीजें अपनी यू नो एक्सेप्ट करके रील्स तक क्रिएट करते हैं जिसपे अपनी फेलियर्स को भी शेयर करते हैं, क्योंकि उनको अब डर नहीं है किस चीज का। वो सोचते हैं कि अब लाइक्स और कमेंट से आगे बढ़ चुके हैं हम। लेकिन पता है जब आप जिस दिन इतने सख्त हो जाते हैं ना, उस दिन से सक्सेस और लाइक्स कमेंट तो बहुत दूर की चीज है, सक्सेस आप तक आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज अपनी डिजिटल डायरी में लिख लो, मैं ऑनलाइन परफेक्ट नहीं पर रियल हूं और वही मेरी स्ट्रेंथ है। आ रहा हूं वापस, और आज यही थी एक रिफ्लेक्शन ऑफ डिजिटल डायरी जहां हम स्क्रोल नहीं फील करते हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

अच्छा, जब किसी को आपकी लैंग्वेज ना आए ना, तो एक लैंग्वेज होती है उसको सब कुछ समझाने पे, उसको सब कुछ समझने में बहुत हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड लव लैंग्वेज। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और आज लेकर आया हूँ कहते हैं कि कुछ कहानियां चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, भानु रेखा जी की। भानु रेखा जी को आप एक्चुअल में पूरी दुनिया रेखा जी के नाम से ही बस जानती है। मद्रास की एक शर्मीली सी लड़की जिसे हिंदी तक नहीं आती थी, पर इमोशंस सब समझ लेते थे। कैमरे के सामने पहली बार खड़ी हुई तो लोगों ने कहा ये हीरोइन नहीं बन पाएगी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं जज्बे में होती है, और ये जज्बा रेखा जी का अलग ही है। जिंदगी ने दर्द दिए, पर रेखा जी ने उन्हें ग्रेस में बदल दिया। लव स्टोरी अधूरी रही, पर उनकी जिंदगी एक पूरी फिल्म बन गई। उन्होंने सिर्फ उमराव जान नहीं जिया, बल्कि हर दिन में एक शायरी बनकर बस गई। कहते हैं कि कई बार उसको वो मिल जाता है जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो उसके साथ रहकर भी अपने आप को बेहतर और बेहतरीन उसके साथ नहीं बना पाता, और कई बार वो अकेला जो रह जाता है वो सबसे खास बन जाता है, और उसको बहुत अफसोस होता है जो शायद उसको उस समय नहीं पा पाता। थोड़ी गहरी बात थी, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। मैं हूँ आरजे आकाश, और ये थी एक कहानी और एक मिस्ट्री एक लेजेंड की, एक रात एक कहानी में, सिर्फ मिडनाइट लाउंज पर जियो बिंदास।

अच्छा, प्यार हमेशा सिर्फ पालना का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार खोना भी होता है, छोड़ भी देना होता है, लेट इट बी कर देना भी होता है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में, और बारी है जानने की बिफोर यू स्लीप लेटिंग गो इज ऑल्सो लव। कभी कभी प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, कभी प्यार का मतलब होता है छोड़ देना, क्योंकि हर रिश्ता ना हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ बस आपको तंग करने के लिए, कुछ आपको और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने के लिए, बस कुछ इतना ही कर जाते हैं कि हमको और बेहतर बना के चले जाते हैं। लेटिंग गो डजंट मीन्स यू स्टॉप्ड केयरिंग, इट जस्ट मीन यू हैव एक्सेप्टेड दैट सम चैप्टर्स एंड ब्यूटिफुली इवन विदाउट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आज रात अपने दिल को थोड़ा हल्का करो, उन यादों को प्यार से रहने दो, क्योंकि कभी कभी ना छोड़ देना भी एक तरह का प्यार होता है। तो हर वक्त किसी को मैसेज करके क्यों, क्या, कैसे, तुम क्यों कर सकते हो ऐसा, या उस रिग्रेट में नहीं जीना है कि मैंने अपना टाइम एक ऐसे इंसान पे स्पेंड किया, इतना लगा दिया कि सोचो आज मुझे पछतावा है, लेकिन उस पछतावे के बाद भी तो आप आज उसको याद कर करके या उन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस डाल डाल के आज के टाइम को भी खराब कर रहे हो। तो जो हुआ वो तुम्हें सिखा के गया, दैट वॉज अ लेसन, और लेसन नहीं मिलेंगे तो सीखोगे कैसे, स्कूल बिना पढ़ाई किए कर पाएगे? तो इसलिए जो सीखा उसको याद रखो, आगे रिपीट मत करो, इसलिए हर रात बिफोर यू स्लीप जरूर सुनो जी बिंदास।

अच्छा, नोटिफिकेशंस भी ना बड़ी कमाल की चीज है, एक सेकंड में आपकी हार्ट बीट को तेज कर सकती है। नहीं, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। एक छोटी सी नोटिफिकेशन, आप कोई चीज अगर आनी हो तो घबराहट सी हो जाए, अगर कोई चीज अच्छी होने वाली तो घबराहट हो जाए, कोई रिजल्ट आने वाला है, नोटिफिकेशन आ रहा है, फोन पे मेल आ रही है, जॉब की होनी है, ओए होए होए होए, धक धक बढ़ जाती है। ये नोटिफिकेशन ना जस्ट एक नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक परिणाम है। ये हमारी खुशियों को या फिर गम को डिसाइड कर देता है। हमको ज्यादा नोटिफिकेशंस पे डिपेंडेंट नहीं हुए भाई। वैसे आपके दिल की आवाज डिपेंडेंट, मैं यही चीज कहूंगा कि किस चीज पर नहीं होना है आपको। डिपेंडेंट होना है तो अपनी खुशियों को कैसे खुश करना है, अपने आप को कैसे, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है, इस पर होना है। डिपेंड होना है अपनी कंपनी पे कि कैसी कंपनी आप चूज कर रहे हो। तो चलिए इस कंपनी को और अच्छा बनाते हैं, यानी कि आपकी मेरी कंपनी को, इस जोड़ी को और खूबसूरत बनाते हैं। यहां से जाने के बाद भी इंस्टाग्राम पर जुड़ जाते हैं, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और उसके बाद अपने दिल की बात बेझिझक शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूं अपनी प्ले लिस्ट से, ताकि जो आपका सफर है, चाहे जिंदगी का हो या गाड़ी का, इसी तरह से खूबसूरत रहे और आप ऐसे मुस्कुराते रहे, साथ में गुनगुनाते रहे, ताकि आपका दिल भी कहे जियो बिंदास।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव
4: 106.3 रेडियो ऑलिव
3: जियो बिंदास

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. Radio Olive, your happiness frequency.

अरे भाई, कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो।

0: तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।